0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो
2: Ladies and gentlemen, it's traditional, man. Neo Kello.

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो